आगो सोई सक्सेस हो जब मगी गनु वी बना जी दाबला मगो लंगे जब मगी गनु फाया ले तरगो के देसी नते ने दितियर बढ़िया जाब कॉलेज इन बना जाके फैम में तुगे जाब कॉलेज इन कुले ने मबिनी के ले कांड कांड जी दाबला मसो न क्वेगेरिया सो कुले लामी तन डारियो गरीब साना Jamma gigenu.